जप हर हर जप हर हर नाम लथेड़े जगता पाराम। हर हर नाम जिनी आराध्या इनके दुख पाप निवारे। सदगुर ज्ञान खड़ग हद तीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पये शरीरा। अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया। तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पत्थर तरे तराया। सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे। हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम। वढांस महला चौथा कोड़ियां एक ओंकार। सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम। तन मानस जन्म पुन पाइया राम। मान जनवर पुनने पाया देसो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया। ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया। वड़फागी पाई नाम सकाई

मन माने गुरके शब्द अपार ए सज्जन मिले ना विछड़े जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत न आईया शब्द न करे विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे पाए प्यार मनमुख से ती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति तुड़दी विल मना हो गई इत दोस्ती चलन विकार जिन्ना अंदर सच्चे का पौ नाही ना।

सतगुर मिले ता निर्मल होवे हर नामो मन मसाए। नानक नाम ते आया सुखदाता दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया

अंतर सांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम निवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत

की खबर ना पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम ना पागै सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वेड़ाना जल थल।

प्रभाते हर रसना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना से काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो नाच पाओ।

ना च मात पिता सुदबंधव ना च कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली जोत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ जोत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय ताड़ी लाई जन तो पाए काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते को परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाईगे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

मन मेरे गुर बचनी निद पाई ताते सच मैं रहा समाई रहाओ। गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी, गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा। गुर चरणी मन लागा ता जमका मार्ग भागा, पयज निरभो पाया ता सहजे कै कर आया। पंत नानक बूझे को बिचारी इस जग में कर।

प्यारे रख हो पैज हमारी रखाओ शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अनजन जागा महा गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया हर का मार्ग सदा

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो देव उपदेशा मां न कीजे शरण परिजे करे सो पला मनाईये सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाईये पयो अनुग्रह पर

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिस्रे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रखाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुविए प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तिद घी लागा तय सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल सो अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कहलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरत्या नयन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चदर सियाने

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रखाओ। जे बा स्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आन दिन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कदा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभ हो बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संतो या बतावो कारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी।

ए भीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलाओ अपनी बिद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ, बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड पागी, जन नानक ते न ताव। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कछ पाइए, बिरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई, हर घर सिमरु संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ, सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नानक प्रभु तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे।

जन की लाज रखाई, साध संग तेसा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, फलत पलत पव दोवे सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव की आपे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल। अरहाओ अन दिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दाज को कंठ लाए राखे।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब टूंडन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊखा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहद शब्द।

बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया गुर का सद पयो साखी तिन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम स साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विद करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ मज्जन गुर अंधा रासे जप हर हर किल खनासे।

प्रहला जन तुराख लय हर जीओ हर नागस मार पचाया गुरमुखा नू प्रतीत गए हर जीओ मनमुख परम भुलाया हर जी ए तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरणाई रहाओ भगतां नू जम जोए न साकै काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सा भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। क्यों जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पजवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसरे से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो, तुत्यां गई विखाए। सगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठमै होमे दूजे पाए। नानक गुर शरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सब दरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमण मरना मिट गया, काले का किश ना बसाए। हर से ती मन रब रहया, सच्चे रहया समाए। नानक हो बलिहारी तिन को, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक लखनी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारे अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो ने हो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे में हो। जो हर दर्शन की उस्तद है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोमन को माटा। ताकी हो बलोमन हारी, क्यों मेटे गो शाश तुहारी।

रहाओ, छिन छिन तन शीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावे, कहे त कबीर कोई नी तेरा, हिरदे राम की ना जपे सवेरा। संतो मन पवने सुख बनया, केशे जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुरद खिलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिगे दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल परया, जल मिटिया उबा करया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ

हो, ऐसो बेडी बर ना साको, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस जाखेया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

तौ हम बाती, जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तां तेरी सेवा, तू सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस, भगत हेत गावे रविदास। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा। चमरटा गांठ न जनई,

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोग छिपाई है पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चितन किया कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तपे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए। तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए। क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए। ता पत रह आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए। तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए। जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल। क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए। बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा। नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार। ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो सब जगह सार। तनासरी मोहल्ला पहला जियो तब है बारो बार। तब तब खावे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए। जो पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखण होए। बिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग दाग दोष मुझ चलिया।

साच रते अहेन सबैराग, क्यो जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम सुमाणी, सिद्ध साधक तरसे सब लोए, पूरे पाग प्राप्त होए, सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए, तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही न जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बगसे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, होमे विच सवकार कमाहे, गुर प्रसादी होमे जाए, आपे बगसे लए मिलाए, बिखिया का धन बहुत अभमान।

त्याय हर होए संतुष्ट एव पान हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मेरे संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी हरहाओ हर हर करी दृष्टता पयो मन उद्यम हर हर नाम जप्यो गल पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनाश्री मल्ला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जान सब चाह है हर जीव तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिन को रिला लिखिया तुर पाओ जप मन अरामे नाम हर उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हों तिर के सद बलिहारे जाओ रघाओ शरणागत प्रतपा।

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले। रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

अगाउ आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथे सासत भगत करे विचार, मुक्त पाई गे साध संगत बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी।

जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय धारी ओड़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिरसे सगल जंजाल, रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाए।

प्राण पद चित राख सगल गए मरना रहाव। चंदन चोरस पोग करत अनेक बिखिया विकार दिग सगल गए फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जान

रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निकट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रव जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है सबके सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाइये दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रस लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोर बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया।

टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार हरहाओ। जय जय देखो तय तय स्वामी, कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अवग्या जन की, होए गया तत्सार। करन हार खवाला होवा, जाका अंत न पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढ़े मार।

दुख भंजन ताश मना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नावा तेजोगी को जुगत न जानो लोभ मोह माया ममता फोन जे कड़माए पछानो हराव पर निंदा उस्त न जाके कंचन लोस मानो हरग सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो ओ नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो जेवद मन को संसा चूके।

सहज पाए गुण गाए। तनासरी महला पंजवां कर छेवां अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो जो जूनी आयो ते ते उरझायो मानस जन्म संजोग पाया। ताकी है ओड़ साध रखो दे कर हाथ कर कृपा में लो हर राया। अनक जन्म प्रमथित नहीं पाई करो सेवा गुर लागो चरण। गोविंद जी का मार्ग दियो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो। मेरी मेरी करत सदगी विहाव।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभु सते सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरसों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया। संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया। पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो। बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो। आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो। मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो। दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया। जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया। आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया। बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया। तेरा दर्श अपार

तना श्री भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर मोर मन मान जन को पूर्ण दीजे हौ बल बल जाओ रमैया कारण कारण कमन अबोल।

दुकृत सुकृत थारो करमरी अरहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरश्री स्नान रे उलझन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी

जियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां छत नीका अनाज मंगो सत सीका कऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी करकी घीघन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी जैत

नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता जैत सरी महल्ला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी का काखा रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा मेरे मान गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा ते उजड़ परमुए गावारी माया पोयंग बिख चाखा हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमारा कहा हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाण है तुम वड़ अगवड़ पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बार कशु ना जाने गातमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सयाना मेरा मन आलसिया उगुलाना हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, आपे जोगी जुत जुगाहा।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा, थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक जिस भौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग, तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़े हुए त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो, तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग, तेरे सागर पापक को जो संत फेटे वड भाग, जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा। रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो सत संग अनद पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याद न काई। रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई, एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुध पाई, दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस घर।

अनूप अनक बार करो ते बंधन मने चिरावो धूप हार पर तुमरे पर द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक ताड़ लिहु नानक अपने कहो संसार पावक के कूप जैत सरी महला पंजवां को ही जान हरसों देवे जोर चरण गहो पको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन का निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर क्यारस में मगन होद कृपा ते मां बिखिया ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अपहै पद दान सिमरन स्वामी।

यारे तैराव्या लालन मूह तद संदा लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाने बां पगड़ ठाकर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई जयत सरी महला पंजवां घर दूजा शंत एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सलोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कस न जाए अकथ नांग प्रसरणागति रखन को समरथ शंत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया केते करो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नांग दया धारो ताड़ पव जल फेरिया श्लोक निरतन पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का ना हो नानक की बेनतीया मिले न थावे थाओ शंत दूसर ना घीठाओ का पै जाइये आड़ पैर कर जोड़ तो प्रत्याइये चाहे सो पर सदा अपना मने चिंदया पाइये तजमान भो विकार दूजा एक स्यो लिवलाइये अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइये बिनवंत नानक तार कृपा साज नाम समाइये श्लोक हरे मनता को त्याइये सब जाके हाथ राम नाम तन संचिये नानक निर्भय साथ शंत साथीड़ा प्रभ एक दूसर ना गे कोय थान तनंतर आप जल थल पूर सोय जल थल मही यल पूर रहे सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही प्यंत गुणता के क्या गनी पर शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होय श्लोक चित जे चितवया सो मैं पाया नानक नाम ते आए तो सुबाया शांत अमन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जो तरले पर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अघानिया कह पूजा लीने दया कीने अपने कर मानिया ले अंक लाए हर मिलाए जन मरना दुख जले बिनवंत नांग दया तारी मेल लीने एक पले जैत सरी शंत महला पंजवा पाधाणु संसार गर्भ अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत न आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता हे करत बिहावे कुछ दिस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्म करे अनेक हर नाम ना गाव ही परमे जून असंख मर जन्मे आव ही पशु पंखी सैल तरवर गंत कशु न आवे बीज बोवस भोग भोगे किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु अपना पाव ही बिनवंत नानक परमे परमाए किन एक टिकन ना पाव ही जो बन गया बेतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया नैन नैन दीसे बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया हया ना माने सिर खाक शान जिन संग मन तन जालिया।

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना इसकी तूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हाव रंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने से चित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पखलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप पुराया श्लोक संत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड़ तमास चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या टूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

नारकुरंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभाहे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना थूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग श्रवणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यो पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्राप्त संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करण आरमण संयोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सफल नान सो मुहूर्त कीव न सका पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर घर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

इन्नी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही समाले तिन से सोग संताप। आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ। नानक सरन परे दुख पंजन चा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे माया रच बंद हारे। चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जिद भूख तसायो। अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया। टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ। वड़े पागुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया

प्रसाद रूड़ो महारंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए रहाओ हाउ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे हीओ महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाट्यो रे रहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गात वाऊ सो लुबड़ो ने भगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सजन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महराज री गाठड़ियो जरनान करभास ना पौड़ो रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंत सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुए हर रंग पीन पेखो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे पति।

मध्य गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको पुर सतगुरु दान देवायो हरहाओ ते जन को मन तन सब देव जिन हर घर नाम सुनायो तन माया संपैत देव जिन घर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर घर हर जल त्यायो जन नान कौ हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जुगज करे सो।

न पावे, विण कर्मा किश पाइये नाही, जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही, भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाइये, जो किश करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए।

और कैसी चतराई, सौ नदर कर देखै सो दन लेखै, कामण नौ निद पाई, अपने कंत प्यारी सा सोहागन, नानक सा सबराई, ऐसे रंग राती सहज की माती, अहे निस पाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप चख।

मनहार अगम अगाध ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गावे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सेमर सेमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरे संसार।

तेन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले, ओए जप जा प्यारा जीम दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ कुम जाया, ओए आशटे परवार सिउ सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो, जो गुर सिख गुर सेवदे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया, हर दरगे पैनाईया हर आप गल लाईया, जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे, हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजे, पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाईया, हर हर कदे ना चेते हो जाम पकड़ चलाईया, जिन हर नामा हर चेतिया हिरदे उरतारे, तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे, हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सत गुर फेटे।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सतगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए तौ किद बद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया चेसा वरदाने हौ सतगुर को सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहु रंग।

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए न गाव ही। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे। कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो। कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रखाओ। मात पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना। जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो। तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है। कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो। काल फास जब गल परी

तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई

आवे रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरह कहंदे कह कहे कहे जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए।

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाय जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग करगी परचा पाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरभौ पल पाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है। तू ही महला पहला कौन तराजी कमण तुला तेरा कमण सराब बोला।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई।

दूर प्रभ अवनासी रहया परपूर जन नानक गावे देह दूर सूही महला पंजवा ग्रह वस गुर कीना हो कर कीनार दादासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आज प्यासी पिर को लोड़ी तामर कहां गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मोरारे रघाव तासीगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे आंसा सुख पावे या फिर कर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर परम चुकाया तब ते ऊंचा मंदिर मेरा तब कामन त्यागी प्रयो प्री तुम मेरा प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा तेज विशाई सरद अपारा नाव रंग लाल तेज रामने आया जन नानक तिर तान मिल सुख पाया सूही महला पंजवा ओम क्योहियो मिलन प्रताई खोजत चरयो देखो प्रे जाई सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज बचाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई केन बद ही रो धीरे न मानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रखाओ एकता सेव जी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन बतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पई नरासी बहुत दिन लागे देश संतर मैं सगले जागे खिन रहन ना पावो पेन पग पागे होए किरपाल प्रा मिले सुभागे पयो किरपाल सत्संग मिलाया बूझी तप्त करे पिर पाया सगल सीगार हुन मुझे सुहाया कहो नानक गौर परम चुकाया जय देखा ते पिर गए पाई खोल्यो कपाट ता मन ठहराई अरहाओ दूजा तू ही महला पंजवा क्या गुण तेरे सार संभाली मुए निर्गुण के दातारे बय खरीद क्या करे चतुराई इहो जीव पिंड सब तारे लाल रंगीले प्रीत मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे अरहाओ प्रभ दाता मुए दीन तिहारी तुम सदा सदा उपकारे।

साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करण आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तुजारी, दृढ़ नाम दान इसनान सोचारी, कहो नानक इहो तत बीचारी, राम नाम जप पार उतारी, सूही महला पंजवां, लोभ मोहे मगन अपराधी, करण हार की सेवना साधी, पातत पावन प्रभु नाम तुम्हारे, राख लेहो मोहे निर्गुनियारे रघाओ, तू दाता प्रवेंतर जामी, काची दे मान अभमानी, स्वाद बाद ईर्ख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया, दुख भंजन जग जी।

हर सिमर सिमर मान मोकटाह दीन दयाल करो उत्साह नानक दास हर शरण समाह सूही महला पंजवां बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल हिरदमाए निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिख लाव हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचाव अरहाव अमृत नाम पुंच मन माही अचरज साथ ताके बरने ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ ताकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारे नानक दास।

न जाए। सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवां, प्राते काल हर नाम उचारी, ईत्यूत की ओर सवारी, सदा सदा जप

कामना तौल हर जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सा

आठ पैर जित तुद ते आई, निर्मल होवे देह मेरे राम। हाँ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग, तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पाड़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरे बिललाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार अराधे हुए वरते, मां देव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन

लाइन हरसो लाइन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रा पास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बरहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम ज पावे सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कौ प्रापए कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान ने मानी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत भजन दे उरतारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनु लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराध्य आठ पैर गुण गावा सूगी महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे तेरे सेवक को पौ किश नाही जाम नहीं आवे नेरे अरहाओ जो तेरे रंग राते स्वामी इनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सदगुर का दिलासा नाम त्याएन सुख भर पाएन आड़ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्टले सद है ज्ञान त्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सदगुरु नानक जेन कल राखी मेरी सूखी महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया रखो रखन हारे जित तू लावे तित हम लागे क्या ए जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है गुर प्रसाद पोतरी है आप त्या होइए सब रेणा जीवतिया इो मरिए सफल जन्म जिसका जग पीतर साध संग नव जापे सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जे दया करे प्रवे आपे दीन दयाल कृपाल प्रस्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक साधर वाला राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

आओ सह सीगर कामन करे आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत न साहेब सिमरिया जाई तुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत समाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का

दूर है, जैसी आसा तैसी मनसा, पूर है या भरपूर है, हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे, जोग जोग प्रीतम तैसे, बाबा लगन गणाए, हंग पी वन्या, सौरे बलराम जियो, साहु घुमर जाए।

साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दय दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया, जेदी सची बाणी सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोह है दर सचे, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी, अन दिन भगत करे दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम, होमे माया रोग वे आपे, मर जन्मे दुख होई राम, मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई, विन गुर तत् न जानिया भगत विहूणा सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया कोड़ मध्य किने पछाणिया, हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पद खोई भगतां कै घर कारज सचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे, नाम दान सत पाया सदा अखुट कदे ना निखुट, हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे, सदगी ऊचे गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम, हौमे साब केल भगत काटे साज रख्या उर तारे राम, सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई, सच्चा सदगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई, साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई, नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई, साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम, साचे नाम सुख होई मरे ना कोई, गर्भ न जू नीवस ज्योति ज्योत मिलाई, सच समाई सच नाए परगस, जिनी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याइन नानक सच नाम, जिन हिरदे वसया ना विछड़ दुख पाइन, सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे तेत कर सोयला होई राम, निर्मल गुण साचे मन तन साचा, विच साचा पुरख प्रसोई राम, सब सच वरत सचो बोले, जोस करे सो होई,
ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੇ ਆਪੇ ਕਰ।

परमगत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हम में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ माई।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आओ संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम ते आए इहो जगो दुत्तर मनमुख।

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सबल दर्श पेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पा।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हो आपो पागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुरु सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो उन्नी इच्छ सुबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरे न आवे जाई राम। अवनासी पाया नाम त्याया सगल मनोरथ पाए। सांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए। पूर रहया काट काट अवनासी थान थनन तरसाई। को नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। साबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महल्ला पंजवां, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, तरते आप वसाया राम। तरते आप वसाया, सर्व सुख पाया। उत पाई

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ, खिन में झूठ

सगत शिव कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है संतन पाया जाए। इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागनी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई। सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है

आपे श्रेष्ठ उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सब पथ की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक महला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुरप्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़ी इस होर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चलाएगा जगतंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैत यो मन तामद गुर ठाक रखाया नावे नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखया मेट न सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदे हटनाले जेते जीते ते वनजारे खुले हट हो आ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार।

तू दयाल दया पद दाता, क्या ए जंत विचारे मुक्त बंसर तुझते होए, ऐसा आघव खाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त, जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले, इनकी गहन गद कही ना जाई, सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कही है, ना उरवार न पारे, जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग वेज मस्तक काले मार बिदारे, बिलावल मोहल्लाती ज अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा होए ता सोजी पाए, तेते दूजा नाही कोए, तेदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसे मन आए, ता को जाने दुबदा जाए रहाओ, आप शराब तसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए, जिसनु मिले सो निर्मल होए, जिसनु लाए लगे तसे आए, सब सच दिखाले ता सच सुमाए, आपे लिव तात गए आपे, आप जाए आपे जापे, आपे सदगुर शब्द गए आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कहे बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है, सब मैं एक समाना, सदगुर परचय घर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सदगुर पाए, आन दिन लागे सहज त्याना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा भगयाना, आपे गोरो चेला गए आपे,

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बच सो करे जे मेरे चितना चितैनी मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी।

मुए अनाथ तुमरी सरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

जन्म मरण दुख काटिये प्यारे चूके जमकी काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधर है।

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना, अरगाओ आप ही मष्ट, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना, पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म।

आओ नित राम के ए अवखत जोग, आए बसो कर देशम है ए पले संजोग, नानक प्रसो प्रसन्न पए ले गए ब्योग। बिलावल मोहल्ला पंजवां, काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊठ सुधारे शदरपत संतन कै ख्याल रखाओ, अहंग बुद्ध को बिनसना ए तुरकी टाल, बोजूनी जन्म मरे बिख्या बिकराल, सत बचन साधु कह निध जपे गोपाल, सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सहज समाध आनंद सुख

तार पंजवां चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कार बार रहाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृट मान सा बिनसी है क्या लगे गवार। कां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बासना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगाश प्रगट पया निसबासर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ भागा मैला कदे ना हो वई न लागे दागा। पर पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए सहज सुमाना पीतरे छोड़ा न जाए रघाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृता घानिया गुर अमर कराया। सो जाने जन चाखया हर नाम अमोला कीमत कई ना जाइए क्या कह मुख बोला। सबल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी पाव तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बिलावल महला पंजवा राखो अपनी सरण प्रभ मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम परादीस फूलते तुम बख्शन हारे रघाओ। हम अवगुण करे असंख नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देव हो सब दया तार हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों नए चितक समारे। तोय ते भार किस नहीं पव काटन हारे कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कई एकाए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी तरिया तर तेरिया एक नाम अधारा जो तुम

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद फूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एहे प्राप तज रचे जे आन स्यो, सो रलिगे खे हे रघाव, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहार, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न बिरसे न छोड़ जाए,

अंध कुब में गलत थे काढ़े देखा थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए भय बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रताप पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीश कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पाव दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लाव वो रस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लाव उठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्राप आया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए सांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपूरा जिस फेटिया ताके सुख परवेश मन की मत त्यागी है टुणिए उपदेश रगाओ सिमरत सिमरत सिमरिए तो पुरख दातार मन ते कहू ना विसरे तो पुरख अपार चरण कवन स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ ता को लावो सेव निध निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कहू ना विसरे प्रभ परमानंद बिलावल मोहल्ला पंजवां तृष्ण बुझी ममता गई नाठे पै परमा थिद पाई आंद पय गुर कीने तरमा गुरपूरा आराध्य बिरसी मेरी पीर तान मन साब शीतल पय पाया सुखबीर रहाओ सोवत हार जप जागया पेख्या बिस्मात पी अमृत तृप्तासया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सबल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रतेरिया प्रभ की वड्याई, नानक अंत ना पाई बेअंत गुसाई।

ब्रह्मच तारे जम कंकर नेड़ न आवई गुर सिख प्यारे रहाओ करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रसरणागति।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सों राच माय तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी जोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवी सुहागन।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रामंग है संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इओ पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेव की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारे हो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे हर की जया। बेलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढे ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक

रूप त्यावो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे आ मोहिनी सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सह।

दर्शन पावत हे हराचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अनते टूटिए रिखते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जग ही राम बखानो नारद कैत सुंदर रू बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो नानक कहत भगत रशक हर निकट ताए तो मानो बिलावल महला नावा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे रघाव कहां पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफल ते मानो जो प्रजस बसरावे मान मो दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक ए विद को प्राणी जीवन मुक्त खावे बिलावल महला नामा जा मैं भजन राम को नाही ते नर जन्म अकार्थ खोया जय राखो मन माघी रघाव तीर्थ करे व्रत पुन रखे।

प्राण पुकारे परम करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विभूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाए तन निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित राहे चलैया बिलावल मोहल्ला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हों बाल बाल सदगुर सदपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सदगुर परस हर नाम सुमैया जन कीते हर नाम टकैया सदगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मस मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया मन मुख माया मोहवे आपे यो मंत्रसना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करताल चुए अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया बिलावल मोहल्ला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तजे ग्रस्त पया बनवासी एक मनुआ टिके ना टकैया धावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहुत तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेत उत्खुज वर्ण रूप जीजन तो पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड़ होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह संतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काढ़ दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण सुंदे सादे प्रव केरा, अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काढ़ दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मलैया, चाल चल सगी हम प्र प्रबोध, गुण कामन कर हर प्रव लैया, भगत वत्सल उआ को नाम कहित है, तरण प्रभु तिस पाछे पैया, खिमा सीगार करे प्र खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस को करे प्रा मेरा, हम तस आगे जियो कट कट पैया, हार हार हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड गहन गह नैया, हर घर श्रद्धा से वशाई, प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभ अवर अवर किस कीजे, तब बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नान हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, त्यो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाँ खिन पल रहे ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाँ तस विट्टो बाल बल कुम गैया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एको प्रठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रभ आए मिले कन टील न पैया, तार करके या चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता कहे क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बां पकर नानक कढ़ लैया, राग बिलावल महला पंजवां, अष्टपदी कर बारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कल मल दहेन, चढ़ नाव संत उधार, पय तरे सागर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, ई संत निर्मल।

का नाम ते आए दीनानाथ दयाल। मेरे स्वामी दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ, संसार विखिया कूप ताम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो, नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह बिन भजन होवत खेहे, जमदूत महा पयान चित गुप्त कर्म है जान।

फलोहार पिए फल जाए, रस खाए साथ गुआए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐन से जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पै मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जा तो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, साव सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डाडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद कोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लय पावे, रायस तामस सदकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जोग जूत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मनमुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बलावल, नेत उठ कोरी गागर आन लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु न सूझे, हार हार रस लपटियो, हमारे कुल कौने राम कहो। जब की माला लई निपुते, तब ते सुख ना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरियो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरियो बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोल, तीन पवन पर साजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, चेत

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे हर

त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कवन विगास, अंधकार में पया प्रगास।

लूट लेहे सागत पद खोवै सात जना पग मल मलत होवै पांच पूत जने एक माए उत पुज खेल कर जगत विहाय तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

जन्म मरण सब मिटी उपाध, प्रसो लागी सहज समाध, थान तनंतर एको स्वामी, सगल कठा का अंतर जामी, कर कृपा जाको मत दे, आठ पैर प्रभ का नाव ले, जाके अंतर से प्रव्याप, ताके हृदय हुए परगास, भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है काम क्रोध लो मोह ना पोह सा संग जपे निरंकार निंदक कह मोहे लागे शार राम कवच दास का सुनाहो दो दुष्ट तिस पोहु तनाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरण आए जो जो शरण पया हर राय

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल भए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

हित सगली सिमरत श्रवनी सुने करे निंद कमने नहीं गुने जे ओ अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे अपना बिगार बेरा ना संड करे निंद बो जो नी हंड निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा निंदक सोध साध विचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली महला।

प्रपाए कर कृपा आप मिलावे राम मोको हरजन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हरस है मीठा मिल संत जना मुख पावे रखाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत तेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी कराए शिव जन सेवे से बड़ पागी इस मंत्र प्रीत लगावे बिन प्रीति करे बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे ओ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जीवड पा हुए वड मेरे जन मिलदिया टिल न लाइये हर दिन अमृत कुण सर नीके वड फागी तित ना भाइये राम मोको हरजन कारे लागे ओ पानी पखा पीसो संत आगे पाग मल मल तूर मुख लाई गये रखाओ हर दिन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सदगुर मेल मिलाये सदगुर जेवड अवर न कोई मिल सदगुर पुरख तिहाई गे सदगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई गे एक अपने स्वाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाये गे बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाई गे नानक मेल मेल प्रसंगत मिल संगत हंस कराइये राम कली महला चौथा सदगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रखाओ मेरे एक प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड़ भाग गुर सरणी आए हर गोबिंद दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हार जब जपूज पाया नाम हीन तेरे से नगटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीव जी वाल लै स्वामी जिस अंतर नाम साया नानक गुरु गुरु है पूरा मेरे सतगुर नाम तिहाया राम कली महला चौथा सदगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरम कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रखाओ कोट कोट ते तीस त्यावे ताका अंत न पावे पारे हिरदे काम कामनी मांगे हिरद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड़ा वडेरा गुरमुख रखो उरतारे जे वड़पा होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे राग

तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

करनो मद बांसुरी बाजे जेवा तुन आगाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृतकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता सा सीगारी रखाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चिंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पा दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती फड़कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक।

राय सो नर भोर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलटो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरिया

तन ते छुटकी अपनी तारी, प्रभु की आग्या लगी प्यारी। जो कुछ करे सो मन मेरा मीठा, ता यो अजद नयन डीठा। हम ओ जानी रे मेरी गई बलाए, बुझगी तिसे निवारी ममता। गुर पूरे लियो समझाए रखाओ, कर कृपा राख्यो गुर सरना। गुर पकराए घर के चरना, बीस बिसवे जामन ठहराने। गुर पार ब्रह्म एक ही जाने, जो जो किन्नु हम तिसके दास। प्रा मेरे को सगल निवास, ना को दूत नहीं बैराई। गल मिल चाले एक पाई, जा को गुरु।

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

नेत्य लिया सन बेसुमार डिगना डोले कतहू न तावे गुर प्रसाद को इहो महल पावे प्रम पै मोह ना माया जाल सुन

अंत की बार ऊठ सुधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ऐसा माया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए रखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी मां पुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाएगे आपे करकड़ रहा बेआप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खोलाने भ्रम ना ठे दूरे नानक गौगुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय वस हर के नाम की वडियाई कीमत कहन न जाई रखाव तूर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कतनाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपगे उत्त

माया मोहया टेढ़ो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा।

गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रघाव, जा के राम बसे मन माही, तुजन दुत्तर पेखत नाही, सगले ताश वारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने, जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान, गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो साध प्यारे, मोख उजल साते दरबारे, अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार, राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागे, माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश, कड़मे सिंध कियो परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप, निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मनता को जाप रहाओ, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनू साबन सूद, पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कहो अनहुंदी हिरे, देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जगदीसे, ठगन हार अन ठगदा ठग, बिन वखर फिर उठ लागे, संसभा बिन करो बखिया।

ताहु रोग सोग परमीजा ताहु पवन तार जात बेगाए संत बेगावे कीर्तन गाए ताऊ बेगावे दिन रैन चाल ताऊ बेगावे सो पिड़माल ताऊ बेगावे बाल पढ़ावत संत बेगावे हर जगावत ताऊ बेगावे नट नाटक निरते ताऊ बेगावे जिया ए हिरते ताऊ बेगावे राज मैं डरते संत बेगावे हर्ज करते ताऊ बेहावे मता मसूरत ताऊ बेहावे सेवा जरूरत ताऊ बेहावे सोधत जीवत संत बेहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगा।

काटन पय हरण तुसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय संत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान न तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसाख सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाकड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध वागणी दृष्ट न करी राम जियो ने दृष्ट आवे मर्त हावे महागार मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओड तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत संत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नावनित ग्रे परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडम्बरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नै सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन कीपा प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सा।

आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान जो आवे से जाए फोन आए गए पछतावे लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उतावे से जन उबरे जिन हर पाया धंधा मुआ विगोती माया जो दिसे सो चालसी इसको उम्मीद करे ओ जियो समपो अपना तन मन आगे देओ अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट गुणकी मारी होमोई सब धरती मन चोट राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकी।

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुणते सरगुण।

होवे जग करड़ा मन मुगावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पाणे सच पै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचार शब्द वसे सच अंतर ही तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हेवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल जोत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जो जो काल संघार है बोले बाणी नानक विचार शब्द भागत सस जोत अपारा सस कर सूर वस मिटे अंधारा सुख दो समकर नाम अधारा आपे पार उतारण हारा गुर परचे मन सा समाए प्रणत नानक काल न काए नाम तत् सब ही सिर जाप बिन नावे दुख काल संताप तत्तो तत् मिले मन मान दूजा जाए इकत कर आन बोले पवना गगन गरज नानक नेचल मिलन सहज अंतर सुनंग बार सुनंग तिर पमन सुनम सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप ना पुनंग काट काट सुन का जाने पेयो आद पुरख निरंजन देयो जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहाते होई अनहत सुन रते से कैसे जिसते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरे ना आवे जाहे नानक गुरमुख मन समझाहे नौ सर सुभर दसवें पूरे ते अनहत सुन वजावे तूरे साचे राचे देख हजूरे कड़कड़ साच रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज पाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद न सोवे सुन शब्द अपरंपर धार है कहते मुक्त शब्द निस्तार है गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते कबुद चवावे सोकत ठाए क्यों तत् न बूझे चोटा खाए जम दर बाधे कोए न राख बिन शब्दे न ही पद साख क्यों कर बूझे पावे पार नानक मनमुख ना बुझे गवार कबुद मिटे।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमती कट चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करें उदरे कारण अपने बैले पेह करेन अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ तब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बय सच्चा करे न्याओ तब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है कूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से ती नहो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया तिन

गाओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग, फिरो तन नगरी।

बिंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत घर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रघाओ जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

जे सिमरन तुझ पोखे नाम आए। सिमर सिमर हर हर मन गाईए, यो सिमरन सतगुर ते पाईए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाई गे संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन

करती है। ईसोगा ग्रह राखी अले मंदिर एक द्वार जा जाके गौ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गौ चरावत ईसो बछरा राखी अले।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारसे ना परसे, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रगाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर दाती, जाग तरह सो कहू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन मैं गह, जाग तरह न अलिया पाख है, पांचों इंद्री बस

पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जग नास्यो गोष्ठ करै, चौमुख दीवा जोत द्वार, पलु अंत मूल विचकार, सर्व कला ले आपे रहे, मन मानक रत्ना मैं गोह, मस्तक पद्म द्वाले मणि, महे निरंजन तिर पवन तनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुल के चावर संख कण गाजे, दल मलदे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाते तेरा नाम, राग नट नारायण महला चौथा, एक ओंकार सत नाम, करता पुरख निरपौ निरवैर।

साधु तूर करो नित मजन सब केलबिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दोय कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निधान।

सदगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

प्रहला जन हर नाश पकड़िया हर रख ली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सत संगत मेरे हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले घर प्रव जाता गुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी घर प्रापाया तिन पूछो घर की बाता पाए लगो निद करो जुदरिया हर मिलो कर्म विदाता लिलाड लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता हर प्र आए मिले सुख पाया सब केलबुख पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया तिनकी उत्तम बाता तिनकी पंक पाये वडभागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा मोहल्ला चौथा सब सिद्ध साधक मुनजना मन पावनी घर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो हरियान मिल्यो सदगुरु खिन बंद मुक्त करायो प्रा मस्त के तुर लिखिया गुरमती घर लिवलायो पंच शब्द दर गए बाजिया हर मिल्यो मंगल गायो पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जो नी गालिये ज्यो डोन जले गलायो मत दे हर अगम ठाकुर गुर चरण मन मैं लायो हर राम नाम मेरो लागो।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निधान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पर पूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

प्रसाद हर समर्त की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मो अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गजोड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महल्ला पंजवां प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत नाही पार रहाओ एखने ताप उथापदा हड़पन करने हार जेत की ना उपार्जना प्रवदान दे दातार हर सरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कर लिहो पौजल विखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महल्ला पंजवां।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देव सा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी दुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मान अवमाना।

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो रघाव। सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते राखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख सोई कर सूखा, सो हर कनी जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, संथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोह जीवन पदवी पाई, जीत आओ मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रखाओ। ताम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद खजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कसन ना जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन सिलवलाई। मारू महला पंजवा, जो समर्थ सर्वगुण नायक, तिसको कहू न गाव सरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओवा को फिर ताव सरे। अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसया।

अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे पयो प्रसाद कृपा नित ठाकुर संत संग पद पाई कहो नानक त्रैगुण प्रमशूटा जो प्रापये सखाई। मारू महला पंजवां अंतर जामी सबद जाने

असाध रोग उपजो तन पीतर तर तन काहू टारियो प्रा बिसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो सच।

नहीं हर हर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता, कहो नानक गुर पूरा मिले, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया, रहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर

दीनानाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पावे तिस ही निस्तारण, अंध कूब ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया, जब तब संजम इस ते किश नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही।

किसे बूझ जिन तू किया प्रव करण कारण एक रखाओ एत मन में तस्यानप जोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे उमा।

गुरपुरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सच बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा रह चाखिया, साचे कार साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद

मूंड मुडाए जटा सिख बाधी मोहन रखे अवमाना मनुआ डोले दहेध धावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाभिग पीवे माया का देवाना किरत न मिटे हुक्म न बूझे पशुआ माए समाना हार कमंडल कापड़िया मान तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर कामया पिया चित लाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट गए बाजारी अंतर बेख बाहर नहीं पाती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेव है विचों आप गुवाए साधन पूजन की आसना करई अचिंत मिले सो पाए बाके ना बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चित लाए आस नरास रहे सन्यासी एक स्यों लिवलाए हर्ष पीवे ता सांत आवे निज करताड़ी लाए मनुआना डोले गुरमुख बूझ तावत वर्ज रखाए गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा बिशन महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खाणी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उरतारी ना बिना नी छूट स्नान ताची तर तू तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए रगत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिवलागी तो प्रसारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है अफरे उपार अफार टरे रगाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबे सिर आहे निस दात सुमार करे मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए रगत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिवलागी।

युगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोड़दान इसनान बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अर्थ।

सुत प्राता सगले सैल उपाय समाये अलखण लखना जाई हे कर करता की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे सुर नरनाथ साहेब सबना सिर पाए मिल।

तेनी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुकम करे सा विख है, एक ना बख्श लए तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। होमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नह पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है। किसनु कहिगे जा आप कराए, जित पावे तित राय चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे तिवे चलाई है। आपे करता आपे भुगता, आपे संजमे आपे जूता, आपे निर्मल मेहरवान मसूदन, जेदा हुक्म ना मेटा जाई है। सेवड़ पागी जिन्नी एको जाता, काट काट वस रहा जग जीवन दाता, एक तय गोबत प्रगट गए आपे, गुरमुख प्रम पहु जाई है। गुरमुख हरजु एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जे तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सच सारा ही गैर गंभीर है, सब जग है।

आपे मेहरवान अगम अथाहे आपड़ कोय ना सके तिसनु गुर शब्दी मेल आया तुदनु सेवे जो तुद पावे गुर के शब्दे सच समावे आन दिन गुण रवे दिन राती रसना हरस पाया शब्द मरे से मरण सवार है हर के गुण हिरदे उरतार जन्म सफल हर चरणी लागे दूजा पाओ चुकाया हर जू मिले आप मिलाए गुर के शब्दे आप गवाए आन दिन सदा हर भगती राते ए जग में लाहा पाया तेरे गुण कहा मैं कहन न जाई अंत न पारा कीमत नहीं पाई आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया ए जग में मोह है पासारा मानव अज्ञानी अंध अंधारा तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया कर्म होवे ता सतगुर पाए होमे मैल शब्द जलाए मान निर्मल क्या रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हिरदे वसाई कीमत कौन करे प्रा तेरी तू आपे

नाम सुमाया जो शरण परे तिस की पत रख जाए पूछो वेद पुराणी हे जे सर सेवा लाए सोई चन लागे गुर के शब्द परम पौ पागे विचे ग्रेस दा रहे उदासी ज्यों कमल रहे विच पानी हे विच होमे सेवा था।

आप खुपावे तो लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहज फनी सिद्ध अंत न जाने, नवत नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ के संगा, ओढ़ गही जगत सरनाया, पय पयान जम दूध दुतर गए माया, हो कृपा इच्छा कर रखो, सा संतन के संग संगा, दृष्ट मान के सगल मथेना, एक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जे प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लैर दे पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनघा शब्द मन वाजंगा, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पय सरनाई, दियो दर्श मन रंग लगा, तेरी गतमत तू है जान है, तू आपे कथे रह आप बखाने, नानक दास दासन को करियो, अर भावे दासा राज संगा, मारू मोहल्ला पंजवा, अल्ले अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर, यो दरवेश कबूल दारा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवारो आसा, दे मसीत मन मौलाना।

तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई। काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का। तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा। हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई। नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना। जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही। साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहण न जाई, जरकत ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दूग सुख लिख पाए, तिल नहीं बदे कटे ना कटाए। सोई हुए जे करते पावे, कह के आवनावना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए। तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले। तौ गुण लाख विकाए, गुण ते गुण मिल पाईए। ये सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए। वणज ना लीजे हाट, नानक पूरा तोल है। कहो ना होवे काट, महला चौथा। ना विहूने परम से, आवे जावे नीत। एक बंद एक टीलिया, एक सुखी हर प्रीत। नानक सच्चा मन लय, सच करनी सच रीत। पौड़ी गुरते ज्ञान पाया, अद खड़ग करारा। दूजा प्रमगढ़ कटिया, मोलोभ अहंकारा। हर का नाम मन वसया, गुर शब्द विचारा। सच संजम मत कूतमा, हर लगा प्यारा। सब सचो सच वर्तदा, सच सृजनहारा। सलोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई। सबदे करे प्यार, सत्संग स्यो मिलदो रहे। सच्चे तरे प्यार, विचो मल कटे अपनी। कुला का करे उधार, गुणा की रास संग्रह। अवगुण कढे विडार, नानक मिलिया सो जानिए। गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा, सागर देखो डर मरो, पै तेरे डर नाहे। गुर के सब संतो किया,
ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਤਾਨ ਆਏ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੜ ਬੋਏ ਥੇ ਚਾਲ ਸੋ ਸਾਗਰ ਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਠਾਕ ਨਾ ਸੱਚੇ ਬੋਏ ਥੇ ਜੇ ਗੁਰ ਤੀਰਕ ਦੇ, ਤੇਦਰ ਜਾਏ ਉਤਾਰੀਆ ਗੁਰ ਦਿਸੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ ਮਾਨ, ਪੌੜੀ ਨੇ ਕੰਟਕ ਰਾਜ ਪੁੰਚ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਾਪਣਾ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਲੀ ਪੂਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰੀ, ਪਾਦਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਮੇਰਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਾਜਨ ਉਤਹੀ ਠਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀਏ,

वाचनी सुखी हूं सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। और कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवई मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे गुर के हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाई है सब तिदे जचा, जो नानक आप नचाएदा तिव ही को नचा। सुध मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई सिस उतार। नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार, महला पंजवा निहु महिंजा तऊ नाल ब्याने कूड़ा वे देख। कपड़ पौ डरावणे जिचर प्री ना देख, महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तो दीदार। काजल हार तंबोल रस बिन पसे हाबरा शार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच, सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट। सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद, पाप पुन विचारिया ब्रह्मा विष्ण महेश। त्रैगुण विस्तारिया नौखण पृथ्वी साज, हर रंग सवारिया वेकी जंत्यो पाए अंतर कल तारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया, तू जाने सब विद आप गुरमुख निस्तारिया। दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा, एक भोरी ना वे छोड़। जियो महिंजा तौ मोया कद पस्ती जानी तोह। महला पंजवा दुर्जन तू जल पाड़ी विछोड़े मर जाहे, कंता तू सौ से जड़ी मैंडा हब।

पौड़ी निरपौ नाम सारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाईए बोजो नी नचा भजन करे तय खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालच मारिया सच्चे पात साहे वेग तुरकर मचा।

है, जन्म मरण मल उत्तर है, सच्चे के गुण गाए मोहल्ला पंजवा, दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया, नानक सबल जन्म जय कट उठा सच तनी मोहल्ला पंजवा, लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझे मूह घणी, नानक से अखणिया बेअन जिनी डिसन दो मा पिरी पौड़ी, जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई, ओ आप तरिया कुटम स्यों सब जगत तराई, ओन हर नामा तन संचया सब तिखा बुझाई, ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिवलाई, ओस सदा सदा कर आनंद है हर सगा सगाई, ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपाई, होवा ओई अल जग मैं गुर ज्ञान जपाई, पूर्व लिखया पाया हर स्यों बने आई, डखणे महला पंजवा सच सुहावा काढ़िए, कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानिए, जिन सज पल्ले होए महला पंजवा, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहालस, सुतड़ी सो सो डिठ तय सुपने हो खनिए, महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा, मन मजाहू लख तुदो दूर ना सो पिरी पौड़ी, तरत आकाश पाताल है चंद सूर बेनासी, बादशाह सा उमराव खान ताहे डेरे जासी, रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाएका सबे उठ जासी, पीर पैकंबर औलिए को थिर ना रहासी, रोजा बाग निवाज कतेव विण बुझे सब जासी, लखचौरा सी मेदनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अविनासी, डखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल, हिगस पाज ना कोय आओ सज्जन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा, आसक आसा बारा मू मन वड्डी आस, आस निरासा हिक तू हाँ बल बल बल गई आस, महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरे ओद, बाज प्यारे अपने।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपागे रखाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खारे चंदन जस पार राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।